0: BJ 淡剑淡剑विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 98612204437
1: अहिले दिउँसोको 3 बज्यो

0: फन पार्क घैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि घैंडाकोट 5 मोबाइल 98612 24437।
1: पहिले रातिको 8 बज्यो।